0: आज प्यार की होड़ी
1: डील बोले तो
2: हाट हाट
3: हवा यार सौदा सौदा
1: ओहो
0: दोनों डील कर सील
1: टाइट वेरी टाइट।